कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है, ओ सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है। और जिवें हजारां नहीं लखां नहीं करोड़ां जय जयकार दियां आवाजां आ रही हैं, और एक ऐसी महक उस कोठड़ी विच, प्रकाश उस कोठड़ी विच जिस वेले ए बालक ने जन्म लिया, आ जन्म लेंदियां ही आ बालक मुस्कराया, हैरान रह गई दौलतां दाई, मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा हुए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई, सत सिगत बोलो श्री, बधाई दीती से बार आई कोठरी विचों, बधाई दीती मेहता जी वधायो, तुहाडे घर तां कोई अनोखा ही बालक जन्मे, जिस दे जन्म लेंदियां ही

गंदी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है, ए तां कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। सात संगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्री दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मेहता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक हुए है ते मैं चाहना हां उस दी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नू बिठाया कोल, कालू जी नू मेहता कालू नू कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदो लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मेनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। सात संगत बोलो श्री ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि आज बालक ओ बालक पैदा होया जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर रहा है। प्यारी सात संगत आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा।

नानक राय सब सिखन को सुख दे जैते पए सहाय। आज बेदियां दी कुल विच गुरु नानक ने आके जन्म लिया और इस कुल नू तन कर दिता। इस वास्ते

बचपन तो ही आ संसार ते परोपकार जो करन आए सन। कौन नहीं रिया गया माता तृप्ता कोल जाके पिता कालू जी नु आख्या, वेखो सोने दी

कोई गल नहीं, परमेश्वर तेनू होर देवेगा, होर देगा ते। उन्हें आख्या प्रभु ता परमेश्वर पिछों देवेगा, पहला तू मेनू हर जाना दे। साहब जी दी बांह पकड़ ली, आख्या जे हरजाना नहीं देगा ता तेनू राय बुलार को लै चलांगा। गुरु नानक दी बांह पकड़ के खेत दा मालक जदों राय बुलार दे कोल पहुंचिया, आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तू मैं क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया, मेहता जी जदो आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइया मजिया आ दूजे दे खेत विच छड के सारा खलियान खेत खराब कर दिता। एदा हरजाना पर भाई तेरा पुत्र है ना नानक? मेहता कालू कहन लगा ए ता है ही निखट्टू, कोई कम कार नहीं करदा, वेले बैठा रहंदा है। एक काम इस नु करन वास्ते भेजिया सी, ओ भी उजाड़ के आ गया।

13 तक गुरु नानक ने गिणिया ते जदों 13 आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया ओदी चोली भरी गई ते कहंदे गए 13 13 13 सार संगत बोलो श्री 13 ही 13 करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के वस्तुआं दे जाऊंदा ते गुरु नानक सच्चा पातशाह चोलियां भरी जांदा किसे ने जाके विद्रोहियां ने शिकायत कर दी थी दौलत खान तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है चोली विछांदा है गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया ते अगे फिर काम चलावांगे साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई कर लो हिसाब ते जदों सारा हिसाब होया इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए दौलत खान बड़ा हैरान होया कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते दे जांदा है ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते

कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। भाई जय राम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी इवे ना आखो, मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया, ओ ता कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले, इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया, लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है, वो कदे डूब नहीं सकदा। ताईं सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया, आवाज आई बेबे करतार चित आवे, उठी बजी बेबे नानकी मेरा वीर आ गया। जां

कर्म सारे नाश हो जान गे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्म कांडा दा वही मुल पैणे। सत सगत बोलो श्री जिवे एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन दे पातशाह बाणी विच कहंदे हन, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका।

वास्ते नहीं भरोसा इस जीने दा, ऐसा सच दा उपदेश जदो उस बच्ची ने सुनिया कि इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है, तां अगा होके जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन, उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरना ते सिर रखिया, गुरु नानक दे चरना दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए, कपाट खुल गए, ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार ते आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच दा उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो, एक प्रभु दा सिमरन करो, उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वड़ा एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदू मिलेगा जदू आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी ता सारिया देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पास्यों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पास्यों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी सप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने सप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहे है बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारिया तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदा ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते जहर तो बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख

बाद गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन साहब, गुरु हर गोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अपने दसवें गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, आनंदपुर साहब छड़िया एक गुफा विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 11 महीने 11 दिन बैठे रहे। 11 महीने अते 11 दिन जदों होए, 11वें दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख नूं एक गल याद कराई। मैं अपना सुत तो ही

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइयां बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है। जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा।

रोरे है, अखा बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए नहीं, पर बंद अखा विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनु हुकम नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया, ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनु ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदू दरबार विच दाखल होन लगा, इथे भी एक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे आ, अरदासां करदे आ, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता, ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबल तू आए। तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे आ, सानू पता है सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए। साध संगत, गुरु किसी चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों काबल गया सी। दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओ कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता, क्योंकि चेतो ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते, ते नाले कहन लगे, सिखा ऐ देख मेरे हाथ ते खाली ने, तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा, पातशाह मैं ता चेतो मसंद नूं दित्ती सन, ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा, पातशाह ए झूठ बोलदा है, ए कंगाल कंगन।

पंडितों की प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते साहबा ने कहा जड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी, जड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ए सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खादा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खादा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी, कीर्तन हो रहे, बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु साहिब जी विराजमान ने। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चेहरे दा रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई, म्यान विच कृपान खिची ते ललकार के कहा, साध संगत मैनू एक सिर दी लोड़, पहला तां किसे नूं समझ ही ना आई, जदों दुबारा कहा मैनू एक सिर दी लोड़ है, हर पासे सहम छा गया कि ए की हो गया, गुरु साहिब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी बारी सिर मंगया।

ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विच बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है ओ पंजो जिन्हां दे सिर वड्डे सन ओ ते जिउंदे ने इक वर्गे कपड़े पाए ने गात्रे कृपान सोहणियां दस्तारां हत्थां विच कड़े तेड़ कशहरे हाथ जुड़े ने पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे तन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हाथ दे नाल खंडा हिलान लग पे पानी दे विच ते मुंह दे नाल बाणी पढ़न लग पे अपनी निगाह खंडे ते टिकाईए खंडा पानी विच ला रहे ने मानो बाणी नू खंडे जरिए पानी विच घोल के

मरण लिखाए मंडल में आए, सबना मरना आया विछोड़ा सबना। हर जो जन्मे है, हर जो बने है, हर जो उपजे है, उस हर एक ने मरना ता है। जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए, बाकी ये गल वखरी है। ओ मौत जो आम लोका वास्ते, जिवे कबीर जी दा वचन सी, जिहे मरणे सब जगत त्रासिया, जिस मौत ने लोका दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी। मौत ता पता नहीं कदों आउणी, मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे, जीण नहीं पई देंदी। जिहे मरणे सब जगत त्रासिया, सारा जगत त्रा त्रा कर रहा है जिस मौत, जिदा नां लैणा चंगा नहीं समझा जांदा। चार बंदे बैठे होण, कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे, कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर, मौत दी गल माड़ी गल है, मंदी गल है, चंगी नहीं लगदी, जीण दी गल कर, मौत दी गल ना कर। जिस नूं भाई मूले ने, भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीना झूठ लेके दिता सी, जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान कीता सी मरदानिआं, कोई तां समझ वाला बैठा इत्थे सियालकोट विच, जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है, और है भी सच। जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकते ने, शक हो सकते ने, शंके रह सकते ने। गर्भ विच है जो इस दा जन्म होवेगा, जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी, कोई पक्की गल नहीं है, शंके वाली गल है। जिस दा जन्म हो गया है, इस नूं कुछ उमरां प्राप्त हो सकेगी, शंके वाली गल है। ये बोल सकेगा, ये तुर सकेगा, शंके वाली गल है, डर बनिया रहिंदा है, पता नहीं चल सके ना चल सके। सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले, कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं, परिवार वाला बन सकेगा के नहीं, कारोबार चल सकेगा के नहीं, हर किस्म दे शंके हो सकणगे। लेकिन एक गल परपक है, हर एक जीव दे संबंध विच इह जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर, मौत ना टल सकेगी, हर जीव ते आवेगी। पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है, जो हर हालत च वापरना ही है सच है, ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओ झूठ है। फिर भी मनुख चाहुंदा है, सच दी गल ना करो, झूठ दी करो, मरण दी गल ना करो। जग मरण ना पाया, नित आप लुकाया, मत जम पकड़े लै जाए जियो। मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए, बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तो बच सकण दे, ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा। जो सच है, जो वापरना है, इस तो बंदा डरदा, कहिंदा जी गल ना करो। जे मरने सब जगत त्रासिया, कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है, मरण विच भी एक आनंद है। कबीर, जिस मरने ते जग डरे मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। भावे मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने, शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओ हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो, आत्मक मौत बंदा मर जावे, मरिया ही होवे। एक तां ओ मौत है, मैं कमाउंदा मर गया, मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया, मरिया ही होया बंदा, जीवन शुरू ही नहीं होया, क्योंकि जीण दा चज नहीं आया। एक ओ मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जांदी, लेकिन एक मौत होर भी, ओ है मनुख दी हौं दी मौत, मैं मेरी दी मौत। जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है, इस पासे दी मौत हो जांदी, हौं दी मौत हो जांदी, ते बंदा इस मौत तों वी डरदा। जिस नूं इह मरना आ गया ना, उहनूं धर्म दे मार्ग ते जीणा आ गया। जिन्हों धर्म दे मार्ग ते जीना आ गया, वह शरीर की मौत बड़ी छोटी समझदा है, बड़ी तुच्छ समझदा है। जिन्हों चज नाल जीना आ गया है, सच्ची गल तां यह है कि चज नाल मरना भी उन्होंने आया है। कबीर जी कहिंदे ने सो मरना गुर शब्द प्रकाशया, गुरु के शब्द द्वारा मैनू मरण का पता लग गया। अब कैसे मरो, मरण मन मानिया, मरण ते चित करदा है, हौं करके मरण नूं चित करदा है। उंज भी जे मौत आवे जी आया, मोए मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार, उधर जीवन शुरू हो जावे। मर मर जाते जिन राम ना जाने, मरदे ता ओ ने, मरदे ही रहिंदे ने ओ, जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने, जिन्हां नूं रब दा पता नहीं, राम दा पता नहीं, ईश्वर दा पता नहीं, धर्म दा पता नहीं।
मरनो मरन कहे सब कोई। हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां ने, मरण दे संबंध च खोजां भी बड़ियां हुंदियां ने, मौत नूं टालन दे जतन भी बड़े हुंदे ने। मौत दी गल तां बड़ी है पर मरना वेखो जिसका इन्ना चर्चा है, जिहड़ी इन्नी सत चीज है, जिहड़ी हर हाल च वापरन वाली चीज है, मनुखे दे बारे बड़ा ही अवेसल है, ओहदे वास्ते कोई तैयारी नहीं। जिन्हां नूं मरना आया, कबीर जी उन्हां दी गल करदे ने, सहजै मरे अमर होए सोई। कुछ लोग ऐसे हुंदे ने शरीर करके मर के भी नहीं मरदे, उन्हां दा जीवन अनंत है, चलदा ही रहिंदा है, क्योंकि अनंत विच वाहिगुरू विच अभेद हो जांदे ने। उन्हां वास्ते मरना कादा माड़ा है। महाराज धन गुरु नानक पातशाह बचन करदे ने ना।

श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, छपे छंद तप प्रसाद। चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत कहे। अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहि जय, कोट इंद्र इंद्राण साहो सहान गणि जय। त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत, तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बरनत। सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्ते।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाए, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

अंतर जोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विच दर्ज है।

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहिंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। साध संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान की समझदा है। ए जेड़ा संसार है एक दरख्त है और ए जीव जंत इस दरख्त दियां टाणियां हैं। ए जीव जंत फुल हन पत्ते हन फल हन तरवर एक अनंत डार साखा ओह पत्र रस परिया। ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। ऐ भाई, इस संसार अमृत दी बगीची है, अमृत दा बाग है और इस बाग नूं परमेश्वर बनाण वाला है। इस गल नूं ओ समझदा है जिदे अंदर राम दा परमेश्वर दे नाम दा प्रकाश हो जाए ते जिदे अंदर राम नाम दा प्रकाश हो जाए ओही गुरमुख बनदा है ते ओही फिरे कहंदा है, नांको बैरी

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंदे हैं। इसे वास्ते इंसान इंसान दे नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हां गल्लां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवा नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हां गल्लां दा उदों

कहंदे ने सुरमा। गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई, राम नाम तो बगैर जीवन

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नाश हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देने वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

तृष्णा रूपी जल सूख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है, हर इंसान भज रहा, जिद कोल एक चीज है उसनू दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदिआं दुख भुल जांदे ने हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानूं तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानूं ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश देंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं।

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे देहतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विलालो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो ओ परमेश्वर तू भुलिया होया। ते जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ए परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ए परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं।

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तामी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा होवे अंधेरे विच हुंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावा अपने सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना दूसरे नूं दुख देना ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहिगुरु है जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

पानी टिक्या रहेगा, जे पानी नो धरती ते डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह सहिब जी फरमांदे हन, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है, और ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर

विष्णु भगवान ने एना दे बंधन कटे तंदुए नु भी मुक्त कीता, इस हाथी नु भी मुक्त कीता, ते दोनों प्रा होता ते ब्रह्मा। पूरे गुरु दी प्राप्ति नहीं सी, भक्ति करदे सन पर माया दा लालच मन विच हटिया नहीं सी, इसे वास्ते एना नु इतना दुख भोगना पिया। और जद भगवान मिले है ते फिर मुक्ति नु प्राप्त होया। इसे शब्द धन गुरु रामदास जी जिथे इन्हों दोनों भरावां दा जिक्र करते ने कि माया पिछे सराफ दे के दोनों ने जोड़ना पाईया, दुख हो गया पर फिर सिमरन कीता ते भगवान ने इन्हों दा पार उतारा कीता। इसे शब्द विच सतगुरु जी फरमांदे हन, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे है। भाई इन्हां कथा कहानियां नूं सुन, गुरु दी बाणी ए कथा कहानियां तेनूं दस रही है, इन्हां तूं सिख्या लै। झगड़ना फिर माया पिछे झगड़ा, पर माया बड़ी मिठी है। साहिब जी फरमांदे ने, पापा बाजो होवे नाही मोया साथ ना जाए। पापा तो बगैर माया बहुती कट्टी नहीं होंदी, ते जद इंसान मरदा है ते ए नाल भी नहीं जाए। सतगुरु जी फरमा रहे ने, सुन ए बाण, मन विच प्यार रख, जिनी भज नठ माया वास्ते करदा है, अगर सिमरन करें ते सिमरन सदका तेरी कमाई विच बरकत पवेगी। ए माया ते कुछ भी नहीं, सिमरन करेगा ते परमेश्वर दी जोत तेरे अंदर जग जाएगी, ओदे नाम दा प्रकाश हो जाएगा, ते फिर तू जिधर भी देखेगा तेनु परमेश्वर नजर आवेगा। इन्हां भगतां दी तरह पर एक वारी तू भी कह उठेगा, है भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं भी परमेश्वर दी कहानी नु जान लिया कि ए संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है, परमेश्वर दा अमृत दा बगीचा है।

शब्द गुरपीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग भौराना गुरता।

जिथे आप जी ने सतगुरु जी के कई चमत्कार देखे हैं, उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नू होर प्रकट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नू रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है, सनातन तो सनातन

उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा मन टिका विच आ गया। नूरानी कोलों पुछया जा करके बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है। अगो जवाब मिलिया पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकिया। अगो गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो पर मैं ते अज दास बन के आया हां। अज ते मैं अपनी झोली खैर पवान आया हां। मेरे ते कृपा करो मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे आप ते मालक हो घर दे मालक हो आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे लकड़ा टोन दे लंगर दे विच प्रशादे पकांदे संगतां नूं छकांदे ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लै के ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तो गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकता है। जुलाहे ने भी किया कौन हो सकता है ते जुलाही ने फिर कह दिता होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहन दी देर सी इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है। इतनी सेवा करन वाला करड़ी सेवा करन वाला जिसनू ने थावा किया है उसनू ते निथाविया दे थाम होना चाहिदा है। बस भगती परवान होई सेवा परवान होई ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया ते इशनान करके बिठाया तखत ते वर देने शुरू कर देते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणियां दे मान हो नितानियां दे तान हो नियोटियां दी ओट निगत्तियां दी गत पत्तियां दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया ते फिर बई कवित दे विच कलम बद कीता इस कारण करके कि आन वाले संसार दे सेवकां नू पता चल जावे कि एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु अंगद साहिब वर्गा ते फिर कोई सेवक हो

कैसियां पवित्र सेवावां गुरु नानक सच्चे पातशाह दियां हन ते नजर आया। कहिंदे ने पिता कल्याण दास जी ने 20 रुपये दिते सन कि बच्चे कोई खरा सौदा करके आओ, सच्चा सौदा करके आओ। 20 रुपये लेके चल पे, जाना ते सी चूड़ काने, मगर रस्ते दे विच ही एक साधु ते संतां दी मंडली नजर आ गई। ऐसी मंडली जेड़े कई चिरां तों अनेकां दिनां तों परमेश्वर दी आस विच बैठे सन, भुखे प्यासे के परमात्मा दर्शन देवेगा ते जे परमात्मा साडे लई कोई भोजन दा उपराला करेगा ते तां ही छकांगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी निगाह पै गई। बालपन विच ही बाबा नानक संतां दी मंडली विच जा बैठे, सिमरन ते बैठ गए, भजन सिमरन की

प्यार नाल, प्रेम नाल इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नूं हरि मंदर दे विच टिका दिता। ते भाई साहब भाई गुरुदास जी कहिंदे ने जैसे सत मंदर कंचन

गोविंद राय जी कुछ वड्डे होए, चार पांच साल दे लगभग आप दी उम्र रोज छोटे छोटे बच्चियां नू नाल लैके ते गंगा दे किनारे खेलने जाउंदे सन। इस गंगा दे घाट ते शिव दत्त पंडित नाम करके एक पंडित तपस्या करया करदा सी। 70 साल दी जिस दी उम्र, श्री रामचंद्र भगवान जी दा उपासक सी। रोज मूर्ति श्री रामचंद्र जी दी अगे रख के, प्रसाद अगे रख के अरदास करदा सी, हे भगवान भोग लाओ। और इस शिव दत्त पंडित नु एक बार अपना दर्शन दियो प्रभु। रोज अरदास करे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, हुण मैं बुढ़ा हो चलिया हां, एक बार अपना दर्शन करा दियो। किते ऐसा ना होवे कि तेरे दर्शन कीतियां बगैर ही इस देही विचों प्राण निकल जान। सात सगत बोलो श्री। और फिर मैनू आ तेरे दर्शना वास्ते फिर जन्म लेना पवे। हे मेरे प्रभु, एक बार दर्शन कराओ। आज जदो अरदास कर रहे है, इस दी अरदास क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जदो कोई मन नाल प्रेम नाल अरदास करता है ता उस दी अरदास प्रभु दे चरणा विच पहुंच दी। गोविंद राय जी खेडदे हुए आ गए ते पंडित शिव दत्त नु वेख्या के बेनती कर रहे है, प्रभु भोग लाओ, प्रसाद अगे रखिया है, लड्डुआं दा थाल भगवान श्री रामचंद्र दी मूर्ति अगे अरदास विच जुड़े है। ताही गोविंद राय जी ने आके थाल विचों एक लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया। पंडित शिव दत्त ने देखिया के कोई बालक है और थाल विचों प्रसाद दा लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया, ता पंडित शिव दत्त नु बड़ा क्रोध आया। कहन लगा, तू कौन है और मेरी पूजा विच विघ्न पा रहे है, जा चला जा इत्थों, ते फिर कल या दोबारा आके मेरी पूजा विच विघ्न नहीं पाउणा। साहब जी चले गए बच्चियां नाल खेडदे होए गोविंद राय जी अगे। अगले दिन पंडित शिव दत्त फिर जदों पूजा विच जुड़िया और अरदास कीती, भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर खेलदे होए आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा ले। सात सगत बोलो श्री। अज पंडित शिव दत्त बड़े गुस्से विच गोविंद राय जी दे पिछे पिछे दौड़िया पकड़न वास्ते। अगे अगे गोविंद राय जी, पिछे पिछे पंडित शिव दत्त। गोविंद राय जी दौड़दे होए माता गुजरी दी गोद विच जा बैठे। कहन लगे, मां जी आ पंडित सानू गुस्सा करदा है। ताई पंडित शिव दत्त भी आ पहुंचिया। कहन लगा, ए तुहाडा लाल है? हाँ मेरा लाल है। पंडित जी हुक्म करो, की गल है? माता गुजरी ने पुछया। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਗ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਗ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਥਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਗ ਲਾਓ, गोविंद राय जी फिर बच्चियां नाल खेडदे आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लिया। आज पंडित शिव दत्त ने गोविंद राय जी नूं बांह विचों पकड़ लिया, आख्या 2 दिन तो मेरी भगती विच विघन पा रहे हैं, आज नहीं छड़ना। कोल पई सी सोटी, सोटी चुके जो गोविंद राय जी नूं मारन वास्ते चुकी तां गोविंद राय जी ने चट अपना रूप भगवान श्री रामचंद्र जी दा बना लिया। सात सगत बोलो श्री। पंडित शिव दत्त वेख के हैरान रह गया, भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हां दा मैं उपासक इस बालक विचों मैनू दर्शन

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लैणे दा भी, क्योंकि पता सी के आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे होए, बिना परीक्षा लिते होए, आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आख्या, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ घरां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नूं छड गए। सोने दियां मोरां चुक के घरां नूं चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया, लैणिया तू नहीं गया वापस?

माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज, आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात सगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा ले आए लैणे नू, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज, आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहिब जी ने आख्या चंगा लैणिया, ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के, गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासे दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कहा लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी, तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात सगत बोलो श्री, हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नु कोल सदया, अपने हृदय नाल लाके भाई लैणे को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती, उसकी ता मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती, ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वही।

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर आ गए। जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी ओछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता किसी किसी को है,

जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैश चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारे नु बनान वाला एक परमेश्वर है आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतें अपछरा खुशी दे गीत गाए आओ फिर इस खुशी दे मौके आपा भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इस लई कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है, जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा, जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े मान विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेता सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलों अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुरु सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो, गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते। फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह दी हजूरी विच जिवें उन्होंने माण कीता, आपां भी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और वधे कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आनी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा का पारावार नहीं, जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार गल सती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाई वाली कराई। मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाई वाल रला दिता, यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया। उस विच सांझी गुरु नाल

ऐसी। पिता कृपाल आज्ञाए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल आज्ञाए दीनी, बारक मुख मांगे।